0: Sponsorship of the KQED live audio stream comes from Xfinity. Thanks to the Xfinity 5-year price guarantee, you're guaranteed 5 years of reliable Wi-Fi with our best equipment. No annual contracts and no fees. Plus, get online in minutes with same-day Wi-Fi. Lock in your price and unlock the possibilities. Xfinity, imagine that. Restrictions apply. Select plans only.
1: Making sense? Okay. Can we try that once? Okay. Let's go. Okay, stop. They're always funny. People think they're uncomfortable. They're more funny than uncomfortable. Right? But, so, right now what's happening is, we see your legs moving more than we see your
2: body.
1: Achha.
2: मुझे लगा था बॉडी भी मूव हो रही
1: होगी नहीं ओके आई जस्ट वांट टू टेल यू अ लॉट ऑफ दीस सीन्स आर लाइक अ लिटिल वर्कआउट
2: फ्रॉम द कोर
1: यस इट्स योर कोर इट्स लिटरली दैट राइट सो यू हैव टू फील योर पेल्विस मूविंग अदरवाइज यू वोंट गेट दैट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट
3: इट परफेक्ट थ्री शॉट्स वी नेल इट एंड वी आर गुड